0: সব কিছু জানি, আমাকে জানার দরকার নাই। তাইকে আপনার মৎস্যমন্ত্রী, আমি বলছি যে ফিশারিটা আপনাদের কাছে আমাকে শিখতে হবে। আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি, কেন এসেছি জানেন তো? আপনাদের সঙ্গে মত বিনিময় করতে, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে, আপনাদের সঙ্গে চর্চা করতে, যাতে করে আমরা আগামী দিনে এই মৎস্য দপ্তর, এই মৎস্য চাষকে আরো উন্নত দিকে নিয়ে যেতে পারি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারি, সেটাই জন্য লক্ষ্য আমাদের।
1: এদিনের অনুষ্ঠানে মঞ্চ থেকে আইসিএআর সিফের ডিরেক্টর ডক্টর টি কে ঘোষাল মৎস্য চাষীদের উদ্দেশ্যে জানান,
2: ফিশারিজ ফ্যাকাল্টি কে লিয়ে, মছুয়ারে কে লিয়ে, যে মাছ চাষ করতে উসকে লিয়ে, মৎস্য চাষি কে লিয়ে আজ কা দিন এক বড়া, বহুত বড়া দিন হ্যায়। সুবহ সে চর্চা হো রহা হ্যায়, পুরা ভারত মে কোনে কোনে মে চর্চা হো রহা হ্যায়। আর এই যে সংস্থান হ্যায় জহাঁ পে হাম লোগ কা আজ বৈঠা হ্যায়, এই সংস্থান এক মালদা ইনস্টিটিউট হ্যায়, 1947 মে জো বানা হুয়া থা, আর উসি মে জুড়া হুয়া থা হামারা প্রফেসর হরিলাল চৌধুরী। इन्होंने संस्था का जन्म का 10 साल बाद, जो हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला 1957 में 10 जुलाई जो डिस्कवरी किया है, जिसको हम लोग आज का दिन में प्रणोदित प्रजनन, इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूस ब्रीडिंग, उसी का तरफ से क्या है ना, हमारा हैचरी, फिश हैचरी, हमारा जैसे मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं, उसी तरफ का ये जो टेक्नोलॉजी है वो लेबोरेटरी में सीमित नहीं रहा, वो टेक्नोलॉजी जो है लेबोरेटरी से सभी का फार्मर्स का घर घर में पहुंच गया। आज कोई भी गांव में जाए, बांकुड़ा में, रामसागर, अभी कुछ बिहार, बिहार में सभी जगह में लोग मतलब आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करता है इंजेक्शन लेके, और उसी का तरफ आज के दिन में हमारा जो फिश का प्रोडक्शन भारत में करीब करीब 197 लाख टन, 19.7 मिलियन टन हम लोग मछली उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो तालाब से है, चाहे वो समुद्र से है, 197 लाख टन मछली उत्पादन करके हम वर्ल्ड में द्वितीय। और इसका जो क्रेडिट है, आप जो हमारा सामने बैठा है, जितना भी फार्मर है, जितना भी चाहते है, भारत के कोने कोने से जो आया है, आज का दिन का और ये जो मछली का प्रोडक्शन है, आप सभी का जो कठिन निष्ठा और अध्यावसाय है, इसीलिए वाह है। तो हम नमन करते हैं आज का दिन में हमारा प्रोफेसर हरिलाल चौधरी को, जिन्होंने ये डिस्कवर किया है, और इसका फायदा जो है आज हम सब लोग, चाहे वो विज्ञानी है, चाहे वो मंत्री जी है, चाहे वो फार्मर्स है, जो भी मछली खाते हैं, सबके लिए वो फायदा मिल रहा है। और बहुत सारे किसान, बहुत सारे युवा आज मछली का क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।
3: बैरकपुर महकुमा शासक जादव सूर्यवन अच्छेलाल केंद्रीय सरकार विभिन्न प्रकल्प কিভাবে লাভ পেতে পারেন এবং তার জন্য মৎস্য চাষীদের কিভাবে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে সে ব্যাপারে সুযোগ সন্ধান দেন।
4: ক্লাইমেট সিকিউরিটি জগতে বাতাবরণ চেঞ্জ হো রা হ্যায়, গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড় রা হ্যায়, অর জেসে জেসে পলিউশন অর পপুলেশন বাড় রহি হ্যায়, ইন সব চিজোন কো দেখতে হুয়ে সিরফ অর সিরফ ডিপেন্ডেন্ট রহনা কি এগ্রিকালচার অর খেতি কে উপর রহনা, ইয়ে এক কিসি ভি এক দেশ, কোই ভি দেশ কে ডিসিশন নহি হো সকতা, ইসলিয়ে হমে सभी प्रकार सभी संसाधनों को खोजना है, जहां से हमें खाना मिल सकता है, जहां से प्रोटीन मिल सकती है, जहां से हम उसे ऑप्टिमम तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे देश के विकास, इसे रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। इसकी रिकॉग्निशन देश की आजादी के साथ साथ और उसके पहले भी हुआ था। 1947 में जब इस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने की बातचीत थी और जब ये एस्टैब्लिश हुआ था, केवल इसका यही मकसद था कि आगे चल के जब तमाम तरीके के फिश की डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा तो ऐसे साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूशन आना। ज्यादा वक्त न लेकर के मैं केवल आपके सामने 6 से 7 स्कीम रीट्रेट करना चाहता हूँ, केवल इसे रीट्रेट करना चाहता हूँ कि सरकार का काम है कि सभी तक आईसी एक्टिविटीज करके इन सभी इंफॉर्मेशन को कॉर्पोरेट करें। तो मैं 6 स्कीम आपके सामने रिपीट करता हूँ, आप लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता होगा, ठीक है। फिशरीज एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसके अंतर्गत में आप लोगों को क्रेडिट मिलता है, जिसके सहायता से आप सभी फिशरमैन इसमें और अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है, एक प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस स्कीम का फायदा उठाइए। ये जो स्कीम है, यह स्कीम आपके फिश से प्रोड्यूस होने वाली जो खाने पीने की जो चीजें हैं वैल्यू एडिशन करके उसमें काम आएंगी, और दो स्कीम और नेशनल किचन डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, तमाम स्कीम देख सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट फेज शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स को पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने की एक पहल है। वेब्स ओटीटी के अंतर्गत माई वेब्स प्लेटफॉर्म पर आधारित इस चैलेंज में लोगों को अपने जिलों की अनोखी कहानियों और सांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाले छोटे वीडियो बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागी 1 से 31 अगस्त के बीच वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर माई वेब सेक्शन पर 1 से 3 मिनट के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इसे देशभर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बैठक में WTO के सदस्य देशों ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, सीमा शुल्क प्रणाली में सुधार और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के प्रयासों की सराहना की। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused